0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है मछली पालन में तालाबों में अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था। मीठे पानी के तालाबों में मछलियों के आहार के रूप में प्राकृतिक आहार जैसे जंतु प्लवक और वानस्पतिक प्लवक आदि उपलब्ध रहते हैं, जिनकी पैदावार तालाबों में जैविक और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से होती है। इस प्राकृतिक आहार की खपत तालाबों में संचित किए गए मछली बीज की संख्या और मछली पालन पद्धति पर निर्भर होती है। मुख्यतः मछली पालन की तीन पद्धतियां अपनाई जाती हैं, विस्तृत मछली पालन, अर्ध गहन मछली पालन और गहन मछली पालन। विस्तृत मछली पालन पद्धति में हमारा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तालाब में सिर्फ मछली बीज ही हम संग्रहित करते हैं तथा इन्हें अपने भोजन के लिए केवल तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक आहार पर निर्भर रहना पड़ता है। जब मछलियां बड़ी हो जाती हैं तब इन्हें पकड़कर बेचा जाता है। अर्धगहन पद्धति में हमारा कुछ नियंत्रण होता है। इसमें खाने के लिए तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक आहार के अलावा थोड़ा सा अतिरिक्त या पूरक आहार भी हम देते हैं, ताकि खाने के लिए मछलियों को रोजाना पर्याप्त भोजन मिल सके। गहन पद्धति में मछली बीज की अधिक संख्या तालाबों में छोड़ी जाती है। मछलियों के लिए तालाबों में प्राकृतिक आहार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता। मछलियों का खुराक पूरा करने के लिए हम बाहर से खाद्य सामग्री या परिपूरक आहार या अतिरिक्त भोजन देते हैं। इस पद्धति में तालाब की तैयारी से लेकर बीज संग्रहण, खाद और उर्वरक प्रयोग, अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था हमारे नियंत्रण में होती है। तालाबों में से मछलियों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भोजन की व्यवस्था दो प्रकार से की जाती है। तालाब में जैविक खाद और उर्वरक के प्रयोग से तथा बाहर से अतिरिक्त भोजन देकर। मछलियों को जो बाहर से हम भोजन देते हैं वो भोजन उनके रुचि के अनुसार होने चाहिए। ये भोजन आसानी से पचने वाले होने चाहिए तथा भोजन व्यर्थ होने के बजाय मछलियों की मांसपेशियों के निर्माण में अधिक से अधिक सहायक हो, ऐसा होना चाहिए। आहार में दी जाने वाली अधिक से अधिक सामग्री किसान के पास ही हो तो इससे लागत कम आती है। कार्प मछलियों को आमतौर पर अतिरिक्त भोजन के रूप में धान की महीन भूसी, गेहूं के चोकर और मूंगफली, सरसों या नारियल की खली का बराबर अनुपात में मिश्रण बनाकर दिया जाता है। खली में तिल का भी प्रयोग किया जा सकता है। मछली के छोटे बीजों को जब नर्सरी तालाब में छोड़ा जाता है उस समय दाना महीन पीस कर देना चाहिए। अच्छा होगा कि अगर पीसने के बाद इन्हें छान लें। किसान भाइयों, संग्रहण तालाब में बीज संचय या संग्रहण के दूसरे ही दिन से संचित मछलियों के कुल वजन के 2 से 3% मात्रा की दर से रोजाना अतिरिक्त भोजन दिया जाना चाहिए। बड़ी मछलियों को भोजन देने से पहले आहार पानी में भिगो कर देना चाहिए तथा अच्छी तरह से गूंद कर गोले बनाकर तालाब में किसी ट्रे या थैली में रखना चाहिए, जिससे कि मछली आसानी से इसे खा सके। जिस थैले में आप तालाब में भोजन रखेंगे उस थैले में छोटे छोटे छिद्र जरूर बना लें, ताकि आहार मछलियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। किसान भाइयों, मछलियों को जो आहार दिया जाता है उसे आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कभी-कभी प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक भोजन दिए जाने पर मछलियां इन्हें ग्रहण नहीं कर पाती, तब ये आहार तालाबों में प्राकृतिक भोजन के उत्पादन में सहायक होते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, मछली पालन में अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था कर आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासनिक कारणवश एमवी नालंदा जलयान की ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए आज सवेरे 9 बजे होने वाली यात्रा रद्द कर दी गई है। अब ये जलयान शुक्रवार 3 तारीख को सवेरे 9 बजे ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए हैडो जट्टी से छूटेगा और रविवार 5 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल गुरुवार 2 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी नॉर्थ पैसेज कल गुरुवार 2 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर शुक्रवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शनिवार 4 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बाराटांग आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल गुरुवार 2 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल गुरुवार 2 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल गुरुवार 2 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हर वर्ष पहली जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात अपनी सेवा, समर्पण और ज्ञान से अनगिनत लोगों को नया जीवन देने का कार्य करते हैं। डॉक्टर केवल रोगों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि अपने धैर्य, संवेदनशीलता और विश्वास से निराश मन में भी उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। सच ही कहा गया है दोस्तों, जहां दवा अपना काम करती है, वहीं डॉक्टर का विश्वास और स्नेह रोगी के मनोबल को भी मजबूत बनाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा शब्द है दवा। दवा का नाम आते ही डॉक्टरों की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों में दवा केवल बीमारी के इलाज का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और भावनाओं के उपचार का भी रूपक बन जाती है। कभी किसी की मुस्कान दवा बन जाती है, तो कभी किसी की एक नज़र जीवन भर का सहारा।

श्रोताओं, डॉक्टर हर बीमारी का इलाज खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक ऐसा रोग भी है जिसका जिक्र साहित्य, संगीत और फिल्मों में सदियों से होता आया है, प्रेम रोग। इस रोग का ना कोई परीक्षण होता है, ना कोई दवा बाजार में मिलती है। कहते हैं इसका इलाज भी उसी के पास होता है जिससे ये रोग लगा हो।

जी हाँ श्रोताओं, डॉक्टर हमारे शरीर की बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन दिल की दुनिया के कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। प्यार, दीवानगी, इंतज़ार और रूठने मनाने के एहसास अक्सर हर इलाज से परे होते हैं, क्योंकि ये बीमारी दिल की है और इसका इलाज शायद केवल महबूब की एक मुस्कान या एक नज़र में ही छिपा है।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं जयशीला। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 286वीं कड़ी।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 286वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। अब पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर

मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव 2026 पर सहायक वन संरक्षक श्रीमती मोनी दीपा चौधरी के साथ ली गई विशेष भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे मन्ना डे और सीमा शर्मा। सवेरे 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर प्रकाश वाडेरा का हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1318वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम वन महोत्सव सप्ताह पर चर्चा तथा फिल्मी गीत भी आप सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर वार्ता वन महोत्सव सप्ताह और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे महेंद्र कपूर रानी रूपलता और अर्शी बेगम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स। और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर डॉक्टर दिवस पर डॉक्टर पार्था मंडल के साथ ली गई भेंट वार्ता और आधुनिक गीत भी आप सुन सकेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:00 जिसमें डॉक्टर वी दामोदरन से बातचीत का विषय रहेगा अदरक की जैविक खेती। युवाणी के अंतर्गत संध्या 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी वन महोत्सव सप्ताह और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। और रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सरगम व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:59 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47।

अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:30 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर, व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव जो 2026 पर सहायक वन संरक्षक मोनिदीपा चौधरी के साथ ली गई विशेष भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर। सवेरे 9:00 आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10:00। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक दिन के 11:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और वन महोत्सव के अवसर पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश श्री विजयपुरम आज अपनी 51वीं वर्षगांठ मना रहा है और टाउन वेंडिंग कमेटी की ओर से नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण 1 अगस्त तक किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीप समूह में कार्यरत सभी डॉक्टरों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि द्वीप समूह में डॉक्टर्स चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपराज्यपाल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े सभी डॉक्टरों की सराहना की है। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में हर साल 1 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव के अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल जी के जोशी ने द्वीपवासियों को बधाई दी है। एक पेड़ माँ के नाम विषय के साथ मनाए जा रहे वन महोत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि समृद्ध जंगलों, अद्वितीय जैव विविधता और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इकोसिस्टम से समृद्ध ये द्वीप समूह एक अनमोल प्राकृतिक विरासत है। जंगल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से वृक्षारोपण और संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेने की अपील की है। उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने मजदूरी संहिता 2019 के प्रावधानों के तहत सरकारी विभागों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ सभी रोजगार की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है। संशोधित दरों के अनुसार अकुशल श्रेणी में 660 रुपये, अर्धकुशल व अकुशल श्रेणी में 741 और कुशल व लिपिकीय श्रेणी में 864 रुपये और उच्च कुशल श्रेणी के लिए 947 रुपये निर्धारित किए गए हैं। संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों की आदेश कॉपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से इन संशोधित दरों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। ऐसा ना करने पर मजदूरी संहिता 2019 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। तुष्णाबाद रेंज के अंतर्गत फरारगंज वन चेक पोस्ट पर एक नियमित वाहन चेकिंग के दौरान कल शाम मायाबंदर से श्री विजयपुरम आ रहे हल्के मोटर वाहन से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत वाहन सहित सभी प्रतिबंधित सामग्री को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छोलदारी रविवार बाजार में भी औचक निरीक्षण कर एक व्यक्ति को जायंट ग्रुप मछली बेचने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिंबरलीगंज पुलिस आउटपोस्ट के कर्मचारियों ने वन्यजीव अपराध के मामले में शोलबे 10 नंबर के रहने वाले दो व्यक्तियों के पास से 14 किलोग्राम हिरण का मांस जब्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वर्षगांठ और स्ट्रीट वेंडर सर्वेक्षण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला

0: ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम का क्षेत्रीय समाचार एकांश आज अपनी 51वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी शुरुआत आज ही के दिन 1975 में हुई थी, जिसकी पहली खबर स्वर्गीय मुरली प्रसाद सिन्हा ने पढ़ी थी। तब से लेकर अब तक समाचार एकांश ने क्षेत्रीय खबरों को समय पर और निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुँचाने का अपना संकल्प बनाए रखा है। इन 51 वर्षों में बहुत से समाचार वाचकों ने अपनी सेवाएँ देकर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के टाउन वेंडिंग कमेटी की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सर्वेक्षण स्ट्रीट वेंडर्स की वास्तविकता और प्रमाणिकता स्थापित करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण टीमों द्वारा 6 जुलाई से क्षेत्रवार शुरू किया जाएगा। ये सर्वेक्षण कार्य 1 अगस्त तक चलेगा। परिषद ने स्ट्रीट वेंडर्स को परामर्श देते हुए कहा कि सर्वेक्षण के समय वेंडर के साथ उनके ठेले का होना अनिवार्य है। उन्हें अपने पास आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे। जो वेंडर अपने संबंधित वार्ड में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। चयनित वेंडर्स को पात्रता निर्धारित करने के लिए लागू योजना के प्रावधानों के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में शपथ पत्र जमा करना होगा। अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन की ओर से 27वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के लिए द्वीप समूह की रोइंग टीम की चयन के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 से 9 अगस्त तक रविंद्र सरोवर झील कोलकाता में आयोजित होगा। चयन 4 जुलाई को सुबह 6 बजे सिप्पी घाट स्थित जल क्रीड़ा परिसर में किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी 3 जुलाई शाम 5 बजे तक अपना पंजीकरण एसोसिएशन के महासचिव ईसुदासन को कर सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस के हेड कांस्टेबल पुष्टिकरण पाठ्यक्रम का फायरिंग अभ्यास प्रातापुर पुलिस फायरिंग रेंज में आज से शुरू किया गया है। कल तक चलने वाला फायरिंग अभ्यास सुबह 5:30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। बर्ड लाइन और प्रातापुर क्षेत्र के निवासियों से अभ्यास के दौरान खुद को और अपने मवेशियों को फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है। समाज कल्याण विभाग के तहत स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा महिलाओं की उद्यमिता, आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका के विकास पर केंद्रित सप्ताहव्यापी जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, तेल की खपत में 10% की कमी लाने, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, वर्जिन नारियल तेल बनाने और ऑर्गेनिक न्यूट्री गार्डन की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. वाई रामकृष्ण, डॉ. जकारिया जॉर्ज और राज्य मिशन समन्वयक डॉ. नीतू सिंधु ने प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की ओर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में श्रमिकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कल क्षेत्रव्यापी विशाल जन प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में पूरे द्वीप समूह से लगभग 2,500 श्रमिकों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न 7 मांगों को रेखांकित किया गया, जिसमें दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के नियमितीकरण और महंगाई भत्ता देना तथा आकस्मिक, अनुबंध, अंशकालिक और योजना श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना जैसे मुद्दे शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और वन महोत्सव के अवसर पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश श्री विजयपुरम आज अपनी 51वीं वर्षगांठ मना रहा है और टाउन वेंडिंग कमेटी की ओर से नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण 1 अगस्त तक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत विविध रंगों, संस्कृतियों और प्रेम का अनूठा संगम है, जो हर दिल में देशभक्ति की भावना जगाता है। यहाँ की मिट्टी में सुगंध, हवा में चंचलता और नदियों में मिठास घुली है, जो इसे सच में एक रंगीला देश बनाती है।

दोस्तों, हम अपने देश से कई कारणों से प्यार करते हैं, जिनमें सांस्कृतिक पहचान, अपनेपन की भावना, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। इसलिए ये जो देश के साथ हमारा बंधन जुड़ा है, वो कभी भी टूट नहीं सकता।

0: राशि किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, हर कोशिश एक नई उड़ान बनेगी। मत रुकना रास्तों की कठिनाइयों से, मत रुकना रास्तों की कठिनाइयों से, क्योंकि तेरी लगन ही तेरी सबसे बड़ी शान बनेगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, आपको बता दें, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये सप्ताह हमारे प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को याद दिलाता है। तो आइए, इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनवाते हैं वन महोत्सव 2026 पर ये विशेष भेंट वार्ता।
1: सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, वृक्ष धरा का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। पेड़ पौधे केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, जैव विविधता और संतुलित पर्यावरण के भी आधार हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन गई है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, जो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमती मोनिदीपा चौधरी को। मोनिदीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद मैम।
1: सबसे पहले तो आप बताएं कि जो वन महोत्सव है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या इतिहास है
2: इसको मनाए जाने के पीछे? उद्देश्य है नागरिकों के मन में वनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण के प्रति उत्साह जगाना। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने की थी। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गतिविधि घोषित किया। उनकी सोच इसे महज एक अभियान न रखकर एक बड़े सांस्कृतिक और प्रकृति प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाने की थी, ताकि लोग इसे खुशी और उत्साह से मनाएं।
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय है, ऐसे में वन महोत्सव का महत्व पहले की तुलना में कैसे बढ़ गया है?
2: जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वन महोत्सव का महत्व पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कई गुना बढ़ गया है। पेड़ प्राकृतिक कार्बन सिंक होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करते हैं। वर्तमान में वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे चुनौतियों के कारण इसका महत्व पहले की तुलना में अधिक प्रासंगिक हो गया है।
1: अब ये बताएं कि ये वन जो है हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था, इसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं?
2: ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने, आजीविका के साधन प्रदान करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वन करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष आजीविका प्रदान करते हैं। वनों से आपको पता ही होगा, रबर, शहद, मोम, रेजिन और कई पत्ते उत्पाद किए जाते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग होने वाले 25% से अधिक तत्व पेड़ों और पौधों से प्राप्त होते हैं, जो वैश्विक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देते हैं। साथ ही अंडमान में, जैसे आप देख सकते हैं, संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन राजस्व के प्रमुख स्रोत है, यानी कि इको टूरिज्म, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करते हैं।
1: क्या अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही समाधान है, या सही स्थान पर सही प्रजाति का चयन भी उतना ही आवश्यक है?
2: सही स्थान पर सही प्रजाति का चयन, यानी कि राइट ट्री राइट प्लेस, अंधाधुंध पेड़ लगाने से कहीं अधिक आवश्यक है।

0: गलत जगह पर पेड़ लगाए गए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जल स्रोतों को सुखा सकते हैं, जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं।
1: यदि किसी नागरिक को पौधरोपण करना हो तो वर्षा ऋतु में किन किन बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा?
0: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा स्थान चुने जहाँ पानी जमा ना हो, यानी कि पेड़ लगाने से पहले हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पानी जमा ना हो। पौधों की जड़ के फैलाव से 2 गुना बड़ा गड्ढा खोदे ताकि पौधे आसानी से पनप सके। गड्ढे में मिट्टी के साथ साथ जैविक खाद और थोड़ी नीम की खली भी मिलाए। पौधों को उतनी ही गहराई में लगाए जितनी की नर्सरी के थैली में वो लगे हुए थे, ताकि जो है वो अच्छे से पनप सके। और बारिश और तेज हवा इनसे बचाने के लिए इनको लकड़ी का या एक बांस का खूंटा सपोर्ट दे, ताकि जो है पेड़ टूटे ना और आसानी से बड़े हो सके। और अगर आप कहीं ऐसे जगह पेड़ लगा रहे हैं जहाँ कि आपको लगता है कि जानवरों से उसको डिस्टर्बेंस पहुँचेगा, तो वहाँ पर आप या फेंसिंग करें या फिर ट्री गार्ड्स भी उसमें अवश्य डालें।
1: अब देखिए, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और यहाँ यदा कदा प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, चाहे वो साइक्लोन के रूप में हो या भूकंप के रूप में हो। तो ऐसे में वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदा, इसका क्या संबंध है आपस में?
0: प्राकृतिक आपदा और वनों की कटाई का सीधा सीधा संबंध है। जैसे हम आजकल टीवी में आए दिन देखते हैं कि भारत, हमारे देश के ही कई राज्यों में बारिश होते साथ ही भूस्खलन यानी कि मिट्टी का कटाव स्टार्ट हो जाता है। कई जगहों पे जो है पहाड़ जो है खिसक के नीचे आ जाते हैं, जिससे कि जनजीवन पर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम अंडमान में भी देख चुके हैं कि जब हमारे यहाँ पर 2004 में सुनामी आया था, तब हमने रियलाइज़ किया था कि वन जहाँ पर भी है, अंडमान में उतना क्षति नहीं पहुँचा था क्योंकि यहाँ पर वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वन जो है आपका बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ का जो प्रकोप है उसको रोकती है, बारिश का चक्र जो है उसको नियंत्रित करती है। क्योंकि आजकल आपको पता होगा एक न्यू टर्मिनोलॉजी आया हुआ है कि एल नीनो, शायद इस साल जो है मॉनसून पे असर बहुत ज़्यादा हुआ है इंडिया में और एल नीनो उसका एक कारण है। तो ये एल नीनो या फिर जो मॉनसून का जो चक्र है उसमें परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के चलते है, और अगर हम वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक सके और वनों को बढ़ा सके तो हम ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचा सकते हैं।
1: मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे द्वीप समूह के लिए?
0: जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब 2004 के सुनामी के दौरान हमने देखा था कि जहां मैंग्रोव वन थे वहां पर नुकसान बहुत कम हुआ था उसकी तुलना में जहां की मैंग्रोव वन नहीं थे। साथ ही मैंग्रोव केवल अपने में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि समुन्दर के पानी और मीठे पानी का जहां सम्मेलन होता है वहां पर ये पनपते हैं, और ये ना केवल मनुष्य के लिए ही बहुत ही लाभदायक है बल्कि ये समुद्री जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। समुद्री जीव इसी मैंग्रोव वन में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रजनन प्रक्रिया के लिए या नर्सरी के लिए जो है अपने अंडों को जो है बड़ी मछलियां या अन्य समुद्री जीव यहाँ पर मैंग्रोव्स में आते हैं, यहाँ पर अपना प्रजनन और अपनी नर्सरी की प्रक्रिया पूरी करते हैं, छिपने के लिए या अपने रहने के लिए भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंग्रोव्स एक रेस्टोरेंट भी है, एक अच्छा नर्सिंग ग्राउंड भी है, एक सुरक्षित आवास भी है। आम शब्दों में कहे तो मैंग्रोव्स की भूमिका बहुत ज्यादा है,
1: जीव जंतुओं के लिए एकदम सुरक्षित स्थल है मैंग्रोव।
0: और सबसे बड़ी बात कि ये कार्बन सिंक का काम करती है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम काफी हद तक रोक सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, जहां मैंग्रोव्स है, जैसे कि आपने शायद मिडिल अंडमान में देखा होगा धनी नाला और ऐसे कई जगह है जहां की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से जो है मैंग्रोव वॉकवेज बनाए गए हैं
1: जी,
0: वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ाने में काफी मदद मिलता है, पर्यटक काफी तादाद में वहां पर जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैंग्रोव्स अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, साथ में जो है प्राकृतिक आपदाओं से भी हमें बचाती है।
1: जैव विविधता के संरक्षण में आम नागरिक किस प्रकार सहभागी बन सकते हैं?
0: एक कहावत है ना कि एक्ट लोकली एंड थिंक ग्लोबली, तो ये कहावत यहाँ पर आती है कि एक आम नागरिक अपने छोटे छोटे कदम से प्रकृति और जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कुछ भी ना सही, एक पेड़। आपके परिवार में कोई भी अच्छा ओकेशन हो, कोई जन्मदिवस हो, कोई शादी हो, सालगिरह हो, तो आप उसमें एक पेड़ अवश्य लगाएं। दूसरा है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है कचरा, तो आप आसपास के पर्यावरण को कचरा से ना भरे बल्कि कचरे का डिस्पोजल जो है आप अच्छे से करें, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी का, बिजली का, इन सब का जो है दुरुपयोग

0: योग ना करे, ऐसा छोटे छोटे काम आम नागरिक अपने स्तर पर अगर करे तो जो है वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है जैव विविधता और एनवायरनमेंट के प्रति।
1: अब ये बताएं कि क्या वन विभाग नागरिकों, स्कूलों, कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कोई विशेष अभियान चला रहा है, खासकर जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो इस दौरान कुछ प्रोग्राम भी रखे गए हैं उनके लिए?
0: वन महोत्सव हमारे यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम प्रतिवर्ष, कहने को तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है 1 से 7 जुलाई का, लेकिन अंडमान में हमारे डिपार्टमेंट के ओर से इसे जुलाई के 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मनाया जाता है,
1: यानी पूरे माह भर मनाया
0: पूरे
1: जाता है।
0: माह भर।
1: जी
0: तो इस माह भर मनाए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत हम स्कूली बच्चों से जुड़कर, एनजीओस के साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जितने भी लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, सबके साथ मिलकर कई कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं।
1: अगर हम स्कूल कॉलेज के बच्चों की बात करें
0: जी
1: तो कोई प्रतियोगिताएं वगैरह भी रखी गई
0: जी
1: हैं इस
0: बिल्कुल,
1: बार?
0: हमारा उद्देश्य होता है वन महोत्सव या पर्यावरण से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हम साल भर मनाते हैं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम युवा पीढ़ी को साथ में लेकर चले ताकि उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न कर सके पर्यावरण के प्रति, तो
1: जी
0: उनका जो सोच है उसको सकारात्मक सोच में परिवर्तन एक ला सके हम। उसके लिए हम सिर्फ वन महोत्सव में ही नहीं, पर्यावरण से जुड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम उनसे स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए कंपटीशंस रखते हैं। ऐसे कंपटीशन हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गया, उसके बाद ड्राइंग कंपटीशंस हो गए, ऐसे कई कंपटीशंस हम उनके बीच में रखते हैं, उनके साथ हम रैलियां भी निकालते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हम साल भर जो है वन महोत्सव के अलावा भी अन्य पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में करते रहते हैं।
1: जी मुनिदीपा जी, ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो बागवानी में, पेड़ पौधों में बड़ा रुचि लेते हैं, तो उन्हें बड़े साल भर इंतज़ार रहता है कि शायद इस बार निशुल्क अगर उनको सीडलिंग मिल जाए तो वो पौधरोपण करें। तो ऐसी भी कोई व्यवस्था है इस वन महोत्सव में?
0: जी हमारे डिपार्टमेंट के नर्सरी जो है आपको हर जगह मिल जाएंगी, जहाँ से कि हम लोगों को मुफ्त में सीडलिंग्स उपलब्ध कराते हैं, और वो चाहे तो फ्रूट बियरिंग सीडलिंग्स हो, जैसे इमली हो गया, जामुन हो गया, उसके बाद नोनी का पेड़ हो गया, मेडिसिनल्स भी कुछ पेड़ होते हैं और कुछ फ्रूट बियरिंग होते हैं, और इसके अलावा जो भी नीम का पेड़ हो गया, तो ऐसे जितने भी पेड़ पौधे हैं हम चारा बनाकर रखते हैं ताकि कोई भी अगर आम नागरिक आए और अपने बाग बगीचे में पेड़ लगाना चाहे तो वो हमसे लेके जा सकते हैं, और ये सुविधा एकदम निःशुल्क है।
1: तो हम ये मानकर चलें कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं सीडलिंग
0: बिल्कुल
1: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
0: बिल्कुल
1: के किसी भी नर्सरी से।
0: किसी भी नर्सरी।
1: अब ये बताएं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस दौरान पौधरोपण तो करता ही है, लेकिन इनके संरक्षण और उनकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की जाती है?
0: सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर पेड़ लगाए हैं या पेड़ लगाने जा रहे हैं। अगर वो एक ऐसा सुरक्षित जगह है जहाँ की कैटल इंटरफेरेंस ना हो तो वहाँ पर तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी रास्ते के किनारे में या कहीं ऐसा जगह लगाए जहाँ की खुला जगह है, तो वहाँ पर हम ट्री गार्ड्स वगैरह डालते हैं। उसके
1: जी
0: अलावा इस मौसम में तो हम अगर पेड़ लगा देते हैं तो काफ़ी दिनों तक उसको पानी तो मिलता रहता है, लेकिन अगर कभी सूखा पड़ जाए या फिर गर्मी का दिन आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो आसपास के सूखे पत्तियां हैं उनको जमा करके वहां पर थोड़ा नमी छिड़क दे ताकि जो है वो रूट्स में पानी को उपलब्ध करा सके। तो
1: जी
0: इस तरह की छोटी छोटी व्यवस्थाएं, फिर कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट भी हम करते हैं, इस साल लगा दिया तो आसपास के झाड़ियों को भी काटते रहते हैं, ट्री गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि पेड़ जो है आसानी से पनप सके, तेज हवा और बारिश के चलते वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, ये सब भी हम देखते हैं।
1: अब ये बताएं कि क्या हमारे द्वीप समूह में कुछ ऐसी स्थानीय वृक्ष प्रजातियां हैं जिन्हें अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सभी को पता होगा वो है हमारे अंडमान पडॉक, जो कि बहुत ही एक विशेष लकड़ी है, एक ऐसी ट्री है जिसका फर्नीचर शायद हर घर में होगा। हालांकि इसको बढ़ने में और इसको टिम्बर प्रोड्यूस करने में 80 से 100 वर्ष लगते हैं, लेकिन अगर आज हम इस एक पहल करें तो आने वाले पीढ़ियों को एटलीस्ट
1: जी
0: पडॉक क्या पेड़ है वो तो पता रहेगा।
1: जी जी
0: साथ ही गर्जन, इतना ऊंचा ट्री है और वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, एकदम स्ट्रेट जाता है ऊपर तक, वो भी है। उसके अलावा कई मेडिसिनल प्लांट्स है जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नोनी वगैरह है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर खट्टा फल लगा सकते हैं रोड साइड में। बीच में हमारे सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन आया था कि हम मैक्सिमम फ्रूट बियरिंग सीडलिंग्स लगाएं ताकि यूनाइटेड नेशंस का जो एक गोल था जीरो हंगर का, तो उसको जो है हम अचीव कर सके,
1: जी
0: क्योंकि विपदाओं का दौर अभी चल रहा है, तो कभी भी अगर कोई विपदा आती है तो अगर हम जितने फलदार वृक्ष लगाएंगे तो एटलीस्ट हमारा आइलैंड जो है कट ऑफ है मेनलैंड से, तो यहाँ पर एटलीस्ट कुछ फलदायक वृक्ष जो है हमें विपदा में सहायता कर सकते हैं।
1: जी जी अंत में वन महोत्सव 2026 के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे?

0: आप। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि पेड़ लगाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित सांस लेने योग्य और हरी भरी दुनिया का निर्माण करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम पेड़ लगाएं ताकि आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रह सके। एक छोटा पौधा कल विशाल और जीवनदायी वृक्ष बन सकता है हमारे एक छोटे से पहल से। वन महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम वनों को संरक्षित करने और प्राकृतिक संतुलन को वापस लाने के लिए मिलकर काम करें, ऐसी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
1: तो श्रोताओं, आइए हम सभी इस वन महोत्सव 2026 पर केवल एक पौध लगाने का ही नहीं बल्कि उसकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लें, क्योंकि आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण का अमूल्य उपहार देगा। तो मोनी दीपा जी, आज आप कार्यक्रम में आई, आपने वन महोत्सव से संबंधित बहुत सारी बातों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। हम समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं, हमारे श्रोता ज़रूर इस पर गौर फरमाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप वन महोत्सव 2026 पर सहायक वन संरक्षक श्रीमती मोनी दीपा चौधरी के साथ ली गई ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था वन महोत्सव 2026, हरित भविष्य की ओर। इनके साथ भेंट कर रही थी जयशीला।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से लोगों का जीवन बचाते हैं। डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि मरीजों को आशा, विश्वास और नया जीवन भी देते हैं। उनकी दिन रात की मेहनत, कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य निष्ठा और मानवता के प्रति समर्पण समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को धन्यवाद दें और उनके स्वस्थ, सुरक्षित एवं सफल जीवन की कामना करें। आप सभी डॉक्टरों को डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

दोस्तों, उड़ना है तो पंखों पर नहीं, अपने हौसलों पर भरोसा कर। आसमान खुद झुक जाएगा, बस अपने इरादों को मजबूत कर। इस विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी

0: का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं

0: है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Viksit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today.

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार थे मन्ना डे और सीमा शर्मा।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने प्रेम पुजारी फिल्म से लिया था, जिसे लिखा था नीरज ने, संगीत से सजाया था SD बर्मन ने व स्वर दिया था किशोर कुमार ने। कार्यक्रम का अगला गीत खून पसीना फिल्म से, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, बोल अनजान के हैं व धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार आइए सुनते हैं मोहब्बत फिल्म का गाना, शब्दकार इंदीवर व स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सीमा, सीमा उठो।
6: क्या हुआ?
5: चेकअप के लिए जाना है ना।
6: सोने दो ना।
5: उठो।
6: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
7: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
8: समय का मोल
9: HIV पे कंट्रोल।
7: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
0: ब्रेक के बाद तराने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ जुदाई फिल्म का गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जांबाज फिल्म का गाना सपना की आवाज में। बोल इंदीवर के हैं व धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए हिंदुस्तानी शैली में प्रकाश वडेरा का बांसुरी वादन। इनके साथ तबले पर प्रेम वल्लभ ने संगति की है। आइए सुने प्रकाश वडेरा का बांसुरी पर बजाया राग बैरागी।

शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप हिंदुस्तानी शैली में प्रकाश वडेरा का बांसुरी वादन सुन रहे थे।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म पागलपंती से। आवाज़ें हैं आशीष कौर और जुबीन नौटियाल की। गीत लिखा शब्बीर अहमद ने तथा इस गीत को सुरों में ढाला तनिष्क बागची ने।

कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की मिली जुली आवाजों में। अमित भट्टाचार्य का लिखा गीत जिसे शुरू में ढाला विशाल शेखर ने।

जावेद बशीर का गाया यह है वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा फिल्म का गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार गीत के बोल रजत अरोरा ने लिखे हैं।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

शफकत अमानत अली और अर्पिता चक्रवर्ती की आवाज़ों में लीजिए सुनिए सत्याग्रह फिल्म से ये नगमा। गीत लिखा प्रसून जोशी ने, गीत को संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए सुनिए मनोज तपाड़िया के लिखे बोल पपोन के स्वर में। फिल्म का नाम है मद्रास कैफे।

श्वेता पंडित के स्वर में यह है जंजीर फिल्म का नगमा। शब्द लिखे शब्बीर अहमद ने तथा इसकी तर्स बनाई मीट ब्रोस अनजान ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं ग्रैंड मस्ती फिल्म का ये गीत संजय राठौर, दर्शन राठौर और पायल देव की मिली जुली आवाज़ों में। गीत लिखा कुमार ने व इस गीत की तर्ज बनाई है संजीव दर्शन ने।

0: नमस्ते।
1: सलीम सुलेमान के तर्ज पर बनी ये है अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, जिसे गाया है राज पंडित, विधि शर्मा और बेनी दयाल ने। फिल्म का नाम है रब्बा मैं क्या करूं।

बॉयज़ तो बॉयज़ हैं इस फिल्म से। लीजिए सुनिए लव जनुजा और अनुज गर्ग की आवाज़ों में ये गीत। पंछी जलोनवी का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई है अनुज गर्ग ने।

मेरे डैड की मारुति इस फिल्म से सुनिए सोनू कक्कड़ को। गीत लिखा कुमार ने व इस गीत के संगीतकार है सचिन गुप्ता।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: हिमेश रेशमिया का संगीत बतकिया, ये गीत सुनिए विनीत सिंह और हिमेश रेशमिया के स्वरों में। फिल्म का नाम है शॉर्टकट रोमियो। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह के स्वर में गीत लिखा व संगीतबद्ध किया संजय लीला भंसाली ने।

अरिजीत सिंह का गाया ये था गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा व संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसाली ने। श्रोताओं, ये थी हमारे कार्यक्रम की अंतिम भेंट। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है,

0: कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं
1: जी
0: ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
1: जी?
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी,
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी,
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800

0: 4405599 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबा

0: नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित

0: कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी
2: इस समय कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहां

0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
1: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी, मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है।

अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1318वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अलीशा चिनॉय और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है इश्क विश्क, समीर का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई अनु मलिक ने।

कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए सोनू निगम के स्वर में साथिया फिल्म का ये नगमा, गुलजार का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई AR रहमान ने।

हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया ये है क्या दिल ने कहा फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक के ने। गीतकार हैं संजय चहल।

क्या दिल ने कहा फिल्म के इस गीत के बाद श्रोताओं अब लीजिए सुनिए जिंदा दिल फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर व संगीतकार नदीम श्रवण।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुने खाके फिल्म का गीत। बोल समीर के हैं, संगीत राम संपत का, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये था खाकी फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

മലയാളം പ്രക്ഷേപണം വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. നമസ്കാരം. श्रोताओ, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे. हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं. दोपहर के 1 बजने वाले हैं. अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी

0: त्रिसाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, 5 people, including 2 minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled.

रानी रूपलता को सुनने के बाद कार्यक्रम में आइए सुने कव्वाली अर्शी बेगम के आवाज़ में। शब्द अनवर फारुकाबादी के हैं।

और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है कव्वाली महेंद्र कपूर की आवाज़ में, बोल शबाब में नहीं की है।

महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत श्रोताओं अभी आप रानी रूपलता, अर्शी बेगम और महेंद्र कपूर को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो सखी हेमलता। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला मैसेज, जिसे हमें भेजा है हमारे श्रोता सबलपुर कंकेरा से फागुन राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में अंदाज फिल्म का ये नगमा।

मजरू टिल्ला से मधु बालूजा और सागर बालूजा तथा सतना मध्य प्रदेश से उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक और माही मल्लिक का हमें संदेश आया है, ये सुनना चाहते हैं किशोर कुमार के स्वर में विदाई फिल्म का ये नगमा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं अवतार फिल्म का ये गीत, जिसे सुनने के इच्छुक मंद श्रोता है सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। तो चलिए समस्त चौहान परिवार के साथ सुने ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर के आवाज़ों में साथी फिल्म का गीत, जिसे सुनने के लिए हमें SMS भेजा है जिला नांदेड़ एटाला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभ प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति ने।

तो श्रोताओं, आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम से चलते चलते आपको बताते हमसे जुड़ने का तरीका। आप अपने फोन के इनबॉक्स में जाकर टाइप करें फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपना नाम और पता, और हमें भेज दीजिए फोन नंबर 9474234000 पर। नंबर एक बार फिर दोहरा दे 9474234000। और अब दीजिए अपने रेडियो होस्ट हेमलता को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज़ और दो

0: 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Quiles scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now 2 clear of Miroslav Klose and only 1 behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई

0: के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से
0: कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से

0: अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट

दो एक से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है व एक या दो स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने साथ ही बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलेगी जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है जिसके कारण समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे 4 जुलाई तक समुद्र में न जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर

0: नमस्कार श्रोताओं, हेलो डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कार्यक्रम में आप सभी को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं, साथ ही पेड़ पौधे जीवन का आधार है, इनसे ही महके संसार है, इसीलिए वन महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश चिकित्सक दिवस और वन महोत्सव का उत्सव मना रहा है। आज का यह दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि डॉक्टर जीवन रक्षक होते हैं और वन हमारे जीवन में किसी वरदान से कम नहीं। वन से हमें हवा, जल, फल फूल, वर्षा, हरियाली, जंगल, नदियाँ, झरने और वादियाँ वनों की ही देन हैं, क्योंकि वन है तो जीवन है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है हमारे कॉल के इंतज़ार में, उन्हें हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। चलिए बातें करते हैं उनसे, सुनते हैं उनके मनपसंद खूबसूरत से गीत और जानते हैं वनों का महत्व और डॉक्टर्स के जो इम्पोर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में। तो चलिए एक हमारे जो पहले कॉलर है उनसे हम जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: हेलो डियर फ्रेंड। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी,

0: Hello, dear friend. Hello, dear friend.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, dear friend.
1: Hello, dear friend.
0: जी नमस्कार, हमारी बात सोनी जी से हो रही है.
1: हाँ जी मैम, सोनी जी से.
0: हेलो, श्री विजयपुरम आरजीटी रोड की सोनी जी से हमारी बात हो रही है.
1: जी मैम, आरजीटी रोड सोनी जी से.
0: जी सोनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. कैसी हैं आप?
1: जी धन्यवाद मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ. आप लोग सब कैसे हैं?
0: हम सब ठीक है. तो सबसे पहले आप बताइए कि आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरा फेवरेट सॉन्ग है हम साथ साथ मूवी से, छोटे छोटे भाई और के बड़े भैया.
0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे. तो सोनी जी, आज हम सब ही वन महोत्सव बना रहे हैं, डॉक्टर्स डे बना रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे शो पे जोड़ने के लिए.
0: जी.
1: और मेरी तरफ से सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे. तो मैं डॉक्टर के बारे कुछ लाइन कहना चाहूँगी.
0: जी ज़रूर.
1: जी डॉक्टर एक्चुअली एक ऐसा रोल निभाते हैं जो डॉक्टर हमारे समाज के लिए सच्चे सेवक होते हैं.
0: जी.
1: हमें वो ज्ञान भी देते हैं, कोरोना से लोगों का इलाज भी करते हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन देने में मदद करते हैं.
0: जी सुनी जी, आपके विचार तो बहुत ही खूबसूरत है. सही मायने में डॉक्टर हमारे जीवन रक्षक होते हैं. समय समय पर हमें अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं और हमारा इलाज करते हैं. तो चलिए, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा. सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत.
1: धन्यवाद मैम.

0: सोनी जी की फरमाइश पर अभी हमने हम साथ साथ है फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुना। चलिए हम जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर जी, कैसे हैं आप?
1: हेमलता जी, हम तो बहुत अच्छे हैं
0: जी। और बताइए, आज वन महोत्सव है, चिकित्सक दिवस है, तो दिल्ली के क्या हालचाल?
1: दिल्ली के देखो, डॉक्टरों के बारे में ये कहूँगा, मेरे 5 ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किए थे, बहुत अच्छे से कामयाब हुए। और इसके अलावा जो आप वन महोत्सव कह रहे हैं, हमारे शहर में तो इतने वन तो रहे नहीं, हाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ वन हैं और कुछ अब तैयार किए जा रहे हैं, जैसे बांस का एक पूरा पार्क बनाया गया दिल्ली में, बहुत अच्छी जगह है घूमने की। तो और इसके अलावा मैंने खुद अपनी छत पे 350 पौधे लगा रखे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास भेज सकता हूँ, और 350 करीब पौधे मेरे पास,
0: मैं खुद ही। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतने सारे पौधे लगाए हैं।
1: एक फूल का नाम बताता हूँ, आप सर्च करके देखिएगा, फुटवाल लिली।
0: फुटवाल लिली जी,
1: वो उसकी खासियत ये है कि उसमें पत्ते नहीं दिखते शुरुआत में, पहले वो फूल ही उठ के आ जाता है ऊपर को, और गोल होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, फुटबॉल की तरह होता है। जब फूल सूख जाता है तो उसके बाद फिर उसके पत्ते आते हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए।
1: और रजनीगंधा है, मोतिया है, मोगरा है, और रात रानी है, और पारिजात
0: भी
1: कमलों में मैंने लगा रखे हैं
0: जी।
1: और कल ही इसके है NPK 1919 DA न्यूवॉर, हाँ दवाई से जो कीड़ों को मारने के लिए कुछ
0: जी। तो धर्मवीर जी ये बताइए कि कौन सा गीत आपको आज सुनवा दे?
1: आपको मैंने गीत बताया है जाके परदेसिया, ये हमारे, हाँ पहले तो एक मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा, छोटे भाई का आज बर्थडे है, और दूसरा एक राकेश की सगाई की बात कर ली है, उनको मुबारक, और तीसरा कल मेरे हमारे साहब की शादी की 16वीं साल
0: जी, जी, जी।
1: 30 जून 19 और कल उनके 16 साल पूरे हुए, तो उनको मैं मुबारकना चाहूंगा, और उनके कल एक उनका बहुत छोटा सा फंक्शन हुआ था उसके पास, उनकी मेरे पास, और बल्कि उनकी पंजाब केसरी में भी फोटो छपी है अजमल भाई की, ज्योति मक्कर और संदीप मक्कर, उनकी पंजाब केसरी में, पंजाब में अखबार आता है उसमें छपी है। तो गाना क्योंकि उनकी पार्टी में एक गाना बहुत चला, मैंने बहुत अच्छा डांस किया उस गाने पर, मैं क्या करूँ राम मुझे, बहुत अच्छा मजाक भी रहा है, बहुत बढ़िया लगा, पर वो गाना चलाना चाह रहा था पर किसी कारण से वो गाना
0: से थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना, अपने मन मस्तिष्क को हल्का कर लेना बहुत जरूरी है,
1: हल्का कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, म्यूजिक थेरेपी होनी चाहिए, कुछ हमारे मित्र हैं
0: जी। चलिए, आपके सभी अपनों को जो आपने बताया, जन्मदिन है, सगाई है, सालगिरह है, उन सभी को हमारी ओर से ढेरों

0: शुभकामनाएं। और
1: हाँ,
0: बहुत
1: दो चार
0: अच्छा
1: मित्र
0: लगा
1: को
0: मुझे
1: काम।
0: आपने इतने सारे पौधे लगाए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका घर भी एक छोटा से पार्क, एक बगीचा जैसा जरूर प्रतीत होता होगा
1: छत
0: आपको। इस आशा के
1: वर्ते
0: साथ आपका गीत हम प्ले करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही बहुत सारे
1: दो चार
0: पेड़ों का भी लगाएंगे।
1: मित्रों
0: हेलो,
1: के नाम, दो चार मित्र के नाम,
0: जरूर जरूर।
1: जैसे कि पूर्णिमा जी हैं और मोनिका जी, सतमी कुंडू जी, और हमारे बेटे केशव नितिन और ज्योति मकर, इनकी शादी की सालगिरह की मुबारक दे दी। शर्मा है और हमारे लतीफ हैं, और इसके अलावा भगवान सिंह है, लोकेश
0: जी जी चलिए
1: स्त्री सिंह राजपूत, सभी को ये और
0: जी प्ले कर रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: हेलो नीतू जी, नमस्कार
1: नमस्कार,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: जी नीतू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: जी श्रोताओं, कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुकी है श्री विजयपुरम से नीतू जी। तो नीतू जी बताइए, दोपहर का समय है, क्या कर रही थी आप?
1: मैं काम कर रही थी।
0: अच्छा, और गाने सुनने का शौक आप रखती हैं? तो किस तरह के गीत आपको पसंद है?
1: मुझे पुराने गीत भी पसंद है, नए गीत भी पसंद है।
0: अच्छा, तो आप जब घर का काम करती है ऐसे समय में आप गीत सुनना पसंद करती हैं? और हमारे रेडियो के कार्यक्रम सुनती हैं आप?
1: जी सुनती हूँ मैं।
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम?
1: लगते हैं सारे कार्यक्रम
0: जी। हेलो
1: हेलो, सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: जी जी धन्यवाद। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं बेबी नंबर वन का मुझे माफ करना ओम साई राम।
0: जी जरूर सुनवाएंगे आपको ये गीत। तो चलिए प्ले कर रहे हैं ये गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप इस समय लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स का, जो कि एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है।

0: Hello, dear friends.
1: अनिल कौशल इंदौर से।
0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: अनिल कौशल इंदौर से।
0: अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप? तो सबसे पहले बता दीजिए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है नमक हराम, तो हमें ना उठाइयो।
0: जी जी, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो बताइए क्या करते हैं आप?
1: बैंक से ही आपसे बात कर रहे हैं और आज जैसा पता है कि आप डॉक्टर
0: जी, तो हेलो, तो अनिल जी, आज हम सभी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मना रहे हैं, वन महोत्सव मना रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं?
1: सबसे पहले तो हम डॉक्टर लोगों को बिल्कुल जीवन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर का महत्व हमारे एक तरह से भगवान के बराबर होता है। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास बुरे सारे बीमार होते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से दवाई क्या देते हैं, एक तरह से हमारा जीवन मान लेते हैं भगवान के बराबर। हम सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं।
0: जी जी जी, क्योंकि डॉक्टर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हमें स्वस्थ रखने में दिन रात वो जुटे रहते हैं। तो चलिए प्ले कर रही हूँ आपका ये पसंदीदा नगमा।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो जी, हमारी
1: हेलो
0: बात सूरत के आसिफ जी से हो रही है। जी,
1: जी मैडम जी ठीक
0: आसिफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: है मैडम जी, आपने फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी, और आपने फोन रिसीव किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, कौन सा गीत आज सुनवाए कार्यक्रम में?
1: आज हमको मैडम जी सुनवा दीजिए, दिल है तुम्हारा का कसम खा के कहो।
0: जी, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। तो आसिफ जी, आज हम सभी जो है वन महोत्सव मना रहे हैं, तो वनों के महत्व के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ
0: हेलो
1: जी,
0: जी, आप वनों के महत्व के बारे में अपने विचार हमसे बांटना चाहते हैं?
1: हाँ क्या कहें मैडम जी सब।
0: जी, तो चलिए, जो गीत आपने कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे, और आप वनों हरियाली के साथ जुड़े रहेंगे और वन महोत्सव के महत्व को समझेंगे। इस आशा के साथ सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: जी जी मैडम जी,

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो जी, नमस्कार जी, केशव जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप बताइए।
0: जी हम सभी ठीक हैं। तो बताइए कौन सा गीत सुनवा दिया आज आपको?
1: मैम गाने गाने के बोल रहे हैं, एक लड़की भीगी बागीची
0: जी,
1: और मूवी है चलती का नाम गाड़ी।
0: जी जी, किशोर कुमार का गाया ये बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: जी मैम
0: जी, तो आप बताइए आपके शहर में आपके आसपास क्या चल रहा है? वन महोत्सव का उत्सव चल रहा है, चिकित्सक दिवस की क्या धूम मची हुई है?
1: अरे तो अब तो थोड़ा वो गया, पेड़ वेड़ थोड़े कम कर दिए
0: जी।
1: बाकी मैंने अपने घर पे लगा रखे मैम पौधे बहुत सारे, फूलों के भी और सब्जियों के भी।
0: जी कौन कौन से फूल के पौधे आपने लगाए हैं?
1: जैसे मैम गुलाब का है, गेंदे के हैं, सभी लगा रखे मैम, और करेले के पौधे, नींबू के, आम का, अनार का है।
0: जी
1: जी
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने आप जो है हरियाली से जुड़े हुए हैं, आप बागवानी कर रहे हैं।
1: जी मैम।
0: तो चलिए, आज समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो जल्दी से सुनवा देते हैं आपका ये गीत।
1: जी जी और मैम कुछ मित्र है, जैसे मेरे फादर है धर्मवीर जी, उन मेरा भाई है नितिन, और जैसे रमेश जी है, अमल जी, विमल जी, राजेंद्र जी, गोल्डी जी, राकेश जी, पुष्कर नाथ, सभी के लिए मैम।
0: जरूर, चलिए आप सभी के साथ सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

श्रोताओं, दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। अब लीजिए, सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। स्वीकार करें आपकी रेडियो सखी हेमलता का नमस्कार। दोस्तों, पैमाना किसी भी चीज़ की मात्रा, गुण और स्तर को समझाता है। वही पैमाना किसी व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता को भी परखने का आधार है। आज के यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में आइए परखें खूबसूरती के पैमाने को। खूबसूरती, सौंदर्य या कहे सुंदरता, इन्हें तो कई तरह से परखा जाता है, लेकिन खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग या आकर्षक रूप तक सीमित नहीं होते, लेकिन इसकी सबकी अपनी अपनी सोच और परिभाषा और पसंद होती है। किसी को बाहरी खूबसूरती आकर्षित करती है तो कोई आंतरिक खूबसूरती का कायल होता है। दोस्तों, खूबसूरती केवल बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के विचार, व्यवहार, गुणों और व्यक्तित्व का भी आईना होता है।

खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, कोई किसी के आंखों का दीवाना होता है। प्यारी सी मुस्कुराहट किसी का भी मन मोह लेती है, वहीं कोई सादगी पर मरमिटता है तो कोई अलहड़ अदाओं पर।

दोस्तों, अगर हम खूबसूरती की बात करें तो पसंद सबकी अपनी अपनी। हर दिल को किसी ऐसे शख्स की तलाश होती है जो आंखों से उतरकर दिल में बस जाए। सुंदर विचारों की खूबसूरती जो हर किसी के दिल में घर कर जाती है, वहीं सकारात्मक सोच भी एक सच्ची खूबसूरती है। ये सोच जीवन को शांति से जीने की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, विकल्प तो बहुत से हैं, बस चुनना हमें है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। श्रोताओं, हमारी आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम ने इंगे रोकर हमांग इंगे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 634 किलोहर्ट्ज़ रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांगा मिनका तलोनी इंग हराप

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं, इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक

कुछ नहीं खाते। ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। विभिन्न कार्यों का करने के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्दी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेह नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com।

0: ट्वीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थ था लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि। बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सिंह, बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पहली कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30, जिसमें श्रोता डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर प्रताप मंडल से की गई भेंटवार्ता सुन पाएंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत अदरक की जैविक खेती विषय पर डॉक्टर वी दामोदरन से की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। दर्द भरे नगमे ये कार्यक्रम

श्रोताओं, आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर 7:15 पर आपको अवगत करवाएंगे मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना से। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। संध्या 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स, विषय रहेगा बछड़े का पालन पोषण। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा पत्ता। रामचरित मानस गान कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। श्रोताओं, वतन के गीत ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 6:40 पर। देशरागनी कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:15। सवेरे 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे मीनू पुरुषोत्तम, मेहंदी हसन। सवेरे 9:00 आनंद लीजिए कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। सवेरे 10:00 सुनिए SMS माई चॉइस कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1319वीं कड़ी आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम आप सुनेंगे सुपर हिट सॉन्ग। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में फनकार होंगे तलत अजीज, गुलाम अली, आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। श्रोताओं, दोपहर 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे शाम 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए बंगला कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:00। 6:30 पर सुनिए लेखिका श्रीमती मीना आनंद का लिखा नाटक बदलते प्रतिमान। मौसम की जानकारी जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30, जिसमें श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम रोजगार समाचार। तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइटिस्ट और रात्रि 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कुमार सानू, अलका याग्निक, इला अरुण, बप्पी लहरे की आवाजों में श्रोताओं लीजिए सुनिए दलाल फिल्म का ये गीत। समीर का लिखा ये गीत है, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणकम तमिल अमुदम वणकम नेर्गले

0: சிறுவர் பூங்கா குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். இத்துடன் இன்றைய தமிழ் அமுதம் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவேறுகிறது. நாளைய எமது தமிழ் அமுதம் நிகழ்ச்சிகள் குரல் அமுதம் தகவல் நேரம் வேளாண் உலகம் திரையிசையா என கேட்கலாம். மீண்டும் நாளை மாலை 5 மணிக்கு தமிழ் அமுதம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். வணக்கம் நேர்களே.
1: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे. हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोताओं, इस समय शाम के 5:30 हुए हैं. लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम.
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम शुरू होच्छे आज के बांग्ला अनुष्ठान. श्रोता बंधुरा, শ্রী শ্রী মা শারদা বলেছেন, কখনো চুপচাপ বসে থেকো না, কিছু না কিছু কাজ করবে, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকতে হয়, নইলে অলস মনে নানা চিন্তা এসে ভিড় করবে. শ্রোতা বন্ধুরা, অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য আজ রয়েছে একটি সাক্ষাৎকার এবং আধুনিক গানের অনুষ্ঠান সঞ্চারী. শ্রোতা বন্ধুরা, আসরের প্রথমেই শোনা যাক একটি সাক্ষাৎকার. শ্রোতা বন্ধুরা, প্রতিবছর 1 জুলাই ভারতবর্ষে জাতীয় ডাক্তার দিবস পালিত হয়। এই দিনটি বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রখ্যাত সমাজসেবী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে উদযাপিত হয়। সমাজের প্রতি চিকিৎসকদের অসামান্য অবদান ও মানবসেবাকে সম্মান জানাতেই এই দিনটি পালিত হয়। শ্রোতা বন্ধুরা, এই বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আমার সাথে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর পার্থ মণ্ডল। স্যার, সব থেকে প্রথমে আপনাকে

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

नमस्कार। कृषि जगत के आज के इस अंक में मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। किसान साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा शुभ विचार से करते हैं। हमारा आज का विचार है, स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। इस सुविचार के बाद किसान साथियों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक चर्चा।

भारत में वन महोत्सव हर साल मनाया जाने वाला वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश में हरित आवरण को बढ़ाना, जलवायु पर्यावरण का मुकाबला करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और आम जनता के दिलों में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह पैदा करना है। साथियों, वन हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं जो शुद्ध हवा देते हैं और जलवायु को संतुलित रखते हैं। वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना हर नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। ये तो रही चर्चा।

0: भाइयों, अब आइए कार्यक्रम में आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है? किसान भाइयों, प्रश्न एक बार फिर दोहराते हैं, धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है? साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहे और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। कार्यक्रम के अंत में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: चलिए किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने इस अंक में बात करेंगे अदरक की जैविक खेती के बारे में। आप अधिकतर किसान साथी अदरक की खेती करते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक सलाह से अगर हम कृषि कार्य करें तो अधिक लाभ भी हो सकते हैं। आइए अदरक की जैविक खेती कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर वी दामोदरन के साथ की गई बातचीत के माध्यम।
4: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे अदरक की जैविक कृषि के बारे में, और हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर वी दामोदरन। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अदरक का जहां तक सवाल है तो हमारे द्वीपों में बहुत सारे किसान भाई करते हैं, और मेरे ख्याल से अभी मौसम भी है, तो यहां की जो जलवायु है, यहां की जो मिट्टी है, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है?
5: जी हाँ, ऐसा देखा जाएगा तो हमारा द्वीप में नारियल और सुपारी का बागान बहुत सारा मात्रा में किया जाता है, और अदरक जो इंटरक्रॉप का माध्यम में कल्टीवेशन करने के लिए नारियल या बगीचा के लिए एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद फसल है, जो किसान भाई करते भी है, इससे बहुत फायदा भी है। और इस द्वीपों में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यानी जैविक कृषि करने के लिए अदरक एक बहुत ही लाभदायक फसल है।
4: अच्छा, तो आपने कहा कि नारियल और सुपारी के बगीचे में इसे आसानी से किया जा सकता है। नारियल और सुपारी के बगीचे अक्सर थोड़ा सा ढलान वाली जगह पर होती है, तो अदरक की बुवाई वगैरह जो करते हैं उस समय ध्यान रखना होगा, अन्यथा मिट्टी कटने का डर रहेगा।
5: जी हाँ, इसके लिए किसान भाई एक्सट्रीम स्लोपी लैंड को अवॉइड करना चाहिए,
4: जहाँ बहुत ज्यादा
5: स्लोप है उसको अवॉइड करना है। इनकेस अगर उसमें भी कल्टीवेशन करता है तो कंटूर मेथडिंग में जो टेरेस बनाना है वो बना के अदरक उगा सकते हैं। मॉडरेट स्लोप में अदरक बहुत अच्छा तरह हो सकता है, इवन जो जगह स्लोप बहुत कम है उस जगह एकदम बढ़िया होता है अदरक के लिए।
4: अच्छा।
5: तो किसान भाई जब जमीन तैयारी करेगा इस स्लोप का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा।
4: और मेरे ख्याल से जो निचली जमीन है वहां पर नहीं करते हैं किसान।
5: हाँ, जिस जमीन में अगर पानी रुकने का प्रॉब्लम होता है, वाटर स्टैग्नेशन, वो जगह को अवॉइड करना चाहिए। वाटर स्टैग्नेशन होगा तो अदरक में एक बीमारी होता है सॉफ्ट रॉट, उसका कतरा पड़ जाता है।
4: अच्छा।
5: इसीलिए किसान भाई जमीन सेलेक्ट करने का टाइम प्रॉपर ध्यान में रखे उसको सेलेक्ट करना,
4: यानी ऐसे जगह ना हो जहाँ पर पानी रुकता। और आपने जैसा कहा कि ढाल हो तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा ढाल ना
5: बहुत
4: हो तो
5: ज्यादा नहीं हो,
4: अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे इन द्वीपों में अगर अदरक की जैविक कृषि करनी है तो कुछ ऐसे वेराइटीज होंगी जिसको की किसान भाइयों को सेलेक्ट करना होगा ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके।
5: इस द्वीपों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने वैरायटीज को एवाल्युएट किया है, इसमें हम लोग पाया गया है कि जोरात करके एक वैरायटी है जो नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही फायदावर है। इसके अलावा मारन और नदिया दो वैरायटी है, ये भी उचित है इस द्वीपों के लिए।
4: तो ये जो वैरायटीज है इनका सिलेक्शन करने के बाद जो बुआई होती है, जो प्लांटिंग होती है, तो उसके लिए पहले से जो उसका जो कंद होता है अदरक का जो, तो उसको किस तरह से तैयार करें, किस तरह से प्लांट करें, क्या सलाह देंगे आप?
5: देखिए किसान भाई, अगर अदरक खेती जैविक रूप से करना चाहता है तो प्लांटिंग मटेरियल जब खरीद

0: से सावधानी रखना चाहिए कि जो प्लांटिंग मटेरियल किसान भाई इस्तेमाल करेंगे अपना खेत में गाड़ने के लिए, उसको उस किसान से लेना है जो ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेट किया है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अपना लोकल वेराइटी भी कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद विशेष रूप से किसान भाई को ये ध्यान देना है प्लांटिंग टाइम, जो टाइम गाड़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: अगर डिले हो जाता है तो यील्ड घटेगा, तो प्रॉपर टाइमिंग में प्लांटिंग करना है। इसके लिए किसान भाई कम से कम अदरक सीड मटेरियल लेके आके अपना घर में स्टोर करके रखे हैं तो तुरंत ही जमीन तैयारी कर देना चाहिए। जमीन में जो खुदाई जो मिट्टी का काम होता है वो होने का बाद किसान भाई दो तरीका से गाड़ सकते हैं। अगर फ्लैट लैंड है जो जगह पानी नहीं रुकता है वो जगह में बेड बना के गाड़ सकते हैं। अगर स्लोपी लैंड है तो रिजस एंड फरो मेथड में गाड़ सकते हैं। तो बेड अगर बनाएंगे किसान भाई तो बेड का चौड़ाई 1 मीटर रखना चाहिए और लेंथ आके 3 मीटर या जो हिसाब से उनको काम कर सकते हैं वो हिसाब से बेड बना सकते हैं। बेड हमेशा जो जमीन फ्लैट लैंड है उसमें ऊंचा बेड बनाना चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार का अगर बेड बनाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 2000 बेड बना सकते हैं। तो जब गाड़ेंगे अदरक को जो सीड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम बिट, यानी कि एक एक राइजोम का एक मात्रा होता है गाड़ने के
1: एक
0: लिए।
1: एक टुकड़ा जो है
0: टुकड़ा का वजन 15 से 20 ग्राम होना चाहिए, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार का टुकड़ा बना के रखना। तो अगर प्रति हेक्टेयर गाड़ना है तो कम से कम 1500 से 2000 किलो का सीड मटेरियल लगेगा किसान भाई को। तो अगर जैविक मेथड में गाड़ेंगे किसान भाई क्या करना है, ये राइजोम बिट को जब गाड़ेंगे तो दूरी भी देखना चाहिए, किसमें उसको किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। एक रो से दूसरा रो का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक प्लांट से प्लांट, एक पौधे से पौधे कम से कम 15 सेंटीमीटर का दूरी रहना चाहिए।
1: अच्छा।
0: इस प्रकार का वो प्लांटिंग करेंगे, जब प्लांटिंग करेंगे तो एक एक जगह में छोटा सा गड्ढा खुरपी से बनाना चाहिए। उस गड्ढे में गोबर खाद और ट्राइकोडर्मा मिक्स करके वो अप्लाई करना चाहिए। प्रति पिट के लिए 20 ग्राम अप्लाई करने से बस से
1: 20 ग्राम।
0: तो फिर एक टुकड़ा अदरक को उसमें रख के प्लांटिंग कर देना चाहिए। जब प्लांटिंग हो जाएगा और एक काम किसान भाई ध्यान से करना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं मल्चिंग, यानी कि कचड़ा वगैरह ढक देना है। अगर धूप काल में गाड़ेंगे किसान भाई, इसका प्लांटिंग टाइम होता है मार्च अप्रैल, तो प्लांटिंग टाइम डिले नहीं करना चाहिए। प्लांटिंग सही टाइम में करके ये मल्चिंग मेन ऑपरेशन है, जितना मल्चिंग करेंगे उतना पैदावार अच्छा होगा।
1: अच्छा, अगर जो किसान भाई अगर कोई लेट है तो अभी भी कर सकते हैं? अगर
0: कर सकते हैं यील्ड में
1: थोड़ा फर्क आएगा।
0: हाँ।
1: अच्छा ठीक। तो ये मल्चिंग करने के बाद ऐसे छोड़ देना चाहिए?
0: या मल्चिंग करने के बाद छोड़ देंगे तो एक महीना जब बारिश होगा अदरक निकलेगा, उसके बाद किसान भाई उसमें ध्यान देते रहना चाहिए खरपतवार, खरपतवार को समय पे निकालना चाहिए। ये पहला खरपतवार जब निकालेंगे 40 दिन का अंतर में, जब फसल निकलने लगेगा फर्स्ट 40 डेज में एक बार खरपतवार निकालना चाहिए। फिर उसके बाद गोबर खाद है तो वो थोड़ा डाल के मिट्टी चढ़ाना, जिसे हम अर्थिंग अप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ा के फिर एक बार मल्चिंग करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर मल्चिंग करेगा किसान भाई प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन का मल्च मटेरियल यूज करना है। इसमें आप पत्ती जो भी हरा पत्ती भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बार जब मल्चिंग करेंगे 45 डेज में, उस टाइम 5 या 6 टन का प्रति हेक्टेयर का हिसाब से मल्च मटेरियल यूज करें। उसके बाद सेकेंड और एक मल्चिंग देना पड़ेगा, ये करीब 3 महीने का बाद, पौधा निकलने का 3 महीने का बाद एक बार फिर खरपतवार निकालना है। अगर आपके पास गोबर का दे तो फिर से देके मिट्टी चढ़ाइए, मिट्टी चढ़ाने के बाद मल्चिंग करना चाहिए।
1: तो ये जो मल्चिंग या जो बिछावन बिछाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है?
0: इससे दो प्रकार का फायदा होता है। एक तो वो क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करता है नेचुरली, फिर ये जो है डीकम्पोज हो जाता है
1: सड़के
0: और वीड ग्रोथ को सप्रेस करता है। तो ये डीकम्पोज होने से ये न्यूट्रिएंट ऐड करता है सॉइल में।
1: और जैसे आपने कहा जो खरपतवार है वो भी कम निकलते हैं चूंकि इसके ऊपर बिछावन रहता है। पहली बार जब मिट्टी चढ़ाएं तो गोबर खाद वगैरह दे दें, उसके बाद भी फिर खाद देने की आवश्यकता होती है इसमें?
0: 90 डेज में एक बार, 90 दिन में एक बार तो देने से अच्छा होता है।
1: अच्छी बात होती है। इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ देखा गया है?
0: इस दीपों में देखा जाएगा तो अधिकतर प्रॉब्लम नहीं है अदरक में। स्टेम बोरर होता है, उसका इंसिडेंस हमेशा जुलाई अक्टूबर में होता है। तो किसान भाई देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि वो स्टेम को बोर करके उसको ये कर

0: करती है,
1: तना में छेद करता है,
0: छेद करती है। अगर ये अगर नोटिस करता है किसान भाई, तो जैविक कृषि अपनाने से नीम तेल को स्प्रे करने से बस से इसका कंट्रोल हो जाएगा।
1: तो इस तरह से जब अदरक की खेती करते हैं किसान भाई, तो कितने दिनों में ये फसल निकालने के लायक हो जाती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है?
0: ड्यूरेशन अगर अदरक को दो प्रकार का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वेजिटेबल जिंजर बोलते हैं, इसको अगर आप यूज करना है तो 6 महीना से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जिंजर को ज्यादा दिन आप रख नहीं सकते हैं। या तो ड्राई जिंजर बनाएंगे, या तो उसको अदरक को फिर गाड़ना, सीड मटेरियल इस्तेमाल करना है तो 8 से 9 महीना का बाद ही हार्वेस्ट करना है,
1: जब पौधे सूखने लग जाए। हाँ,
0: सूखने लगता है तो ये आपको पोस्ट रेनी सीजन में ही इसका हार्वेस्टिंग आएगा।
1: कुल उत्पादन कितना, यहाँ का प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता यहाँ कितना देखा है आप लोगों?
0: यहाँ अगर नारियल बागन में अदरक का फसल करते हैं तो एवरेज यील्ड 10 से 15 टन का होता है। यदि किसान भाई बहुत अच्छा मोनोक्रॉपिंग या बहुत अच्छा प्लेस में गाड़ेंगे तो 25 टन तक भी निकाल सकते हैं,
1: मिल सकता है। अदरक में डॉक्टर साहब, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग या अदरक को निकालने के बाद उनका संरक्षण भी एक बहुत अहम बात होती है। हाँ, तो वो भी थोड़ा संक्षेप में बता दें कि
0: ये चीज तो किसान भाई ध्यान देना चाहिए। जब अदरक मार्केट करते हैं, मार्केट करने का बाद उनको अगर सीड मटेरियल में प्रिजर्व करना है तो उसको ध्यान से एक गड्ढा बना के उसमें स्टोर करना चाहिए, या यदि अगर रूम में स्टोर करेंगे तो रूम अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, एरेशन होना चाहिए, उस तरह जगह में यूज करना है। पिट मेथड में अगर किसान भाई स्टोर करेंगे, बड़ा गड्ढा खोद के उसमें गड्ढा का चारों तरफ गोबर खाद से लीप देना, गोबर से।
1: अच्छा।
0: उसके बाद अदरक जब वो पिट में स्टोर करेंगे, देखना चाहिए किसान भाई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक लेयर अदरक डाल के उसके बाद उसके ऊपर सैंड या तो ये कायर डस्ट,
1: अच्छा मतलब बालू या
0: बालू
1: जो
0: या तो
1: सॉडस्ट,
0: सॉडस्ट को डालना चाहिए एक लेयर। इस प्रकार अल्टरनेट लेयर बना के गड्ढे में रख सकते हैं। जब गड्ढा भर जाएगा तो ऊपर देखना चाहिए, कुछ वुडन प्लैंक्स या तो पत्ती वगैरह से ढकना है। विशेष रूप से किसान भाई ये ध्यान देना चाहिए वो गड्ढा में पानी नहीं जाना चाहिए, एरेशन फुल होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: यदि अगर किसान भाई इसके अलावा ड्राइड जिंजर में जाना चाहते हैं वो भी बना सकते, उसके लिए अदरक को अच्छा से धोना चाहिए, वॉश करके उसका जो सॉइल वगैरह है उसको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद एक बम्बू या तो शार्प वुडन थिंग्स रख के उसको पीलिंग बोलते हैं, छिलका निकाल के सन ड्राइंग करना, धूप में सुखाना, करीब 1 हफ्ता से सुखाने से ये ड्राई जिंजर बन जाएगा। ड्राई जिंजर बनाएंगे तो किसान रिकवरी कम होता है, कम से कम 100 किलो अगर फ्रेश जिंजर आप सुखाएंगे तो 25 किलो ड्राई जिंजर मिलेगा। इसको आप बहुत दिन रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि अगर किसान भाई बहुत ध्यान लगाकर वैज्ञानिक तरीके से अदरक की खेती करें, जैविक कृषि करें, तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है। तो डॉक्टर दामोदर अनाज, आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी बातें आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अदरक की जैविक खेती। साथियों, अभी आप इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर रहे थे, बता रहे थे डॉक्टर वी दामोदरन। किसान भाइयों, चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान साथियों, नीम हमारे आंगन का वो वैद्य है जो बिना किसी फीस के हमें 100 बीमारियों से बचाता है। इसकी कड़वाहट में ही हमारी सेहत का सबसे मीठा राज छुपा होता है। तो आइए सुनते हैं एक जानकारी, नीम के फायदे।
1: फसल को कीट और रोगों से बचाकर रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं। इन रसायनों के उपयोग से खेत की जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। ऐसे में किसान रसायनों को छोड़कर नीम एवं ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब आपको बता दें कि नीम का प्रयोग कैसे करें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को जैविक विधि से खेती करनी चाहिए। इस विधि में अगर नीम के पत्ते, नीम की खली और नीम के तेल का प्रयोग करेंगे तो किसान अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचा सकेंगे। इस तरह फसल से काफी शुद्ध अन्न की उपज प्राप्त होगी, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर फसलों पर कीटों का प्रकोप हो गया है तो सबसे पहले नीम के पत्ते को ठंड में सुखाकर रात भर पानी में डुबा कर रखें। इसके बाद उस पानी को पौधों पर छिड़क दें। इस तरह फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि बैंगन के पौधों को तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बैंगन के पौधों पर नीम के तेल का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान नीम से कीटनाशक तैयार

0: करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि अगर किसान 1 हेक्टेयर खेत में रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उनका कम से कम 1,000 रुपये खर्च होता है। इसके साथ ही रासायनिक कीटनाशकों से फसल का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी को भी हानि पहुंचती है। लेकिन फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए नीम बहुत अच्छा उपाय है। गांव में नीम आसानी से मिल जाता है। अगर किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाएं। नीम का कीटनाशक बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार से है। नीम की पत्ती, खली और इसके तेल की जरूरत होगी। नीम से कीटनाशक बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को एकत्रित कर उन्हें छाया में सुखाएं। पत्तियों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर उन्हें पर्याप्त पानी में रात भर डुबा कर रखें। इसके बाद नीम की पत्ती वाले पानी का छिड़काव पौधों पर करें। इस छिड़काव के बाद फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की खली कैसे बनाएं। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होगी वो इस प्रकार से है। 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली या 5 किलोग्राम निबोली की खली। सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर इससे करीब 3 लीटर अक्र निकाल लें। अगर 1 लीटर कीटनाशक है तो आपको करीब 20 लीटर पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद तैयार मिश्रण को आप अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव के बाद 1-2 दिन में ही इसका असर नजर आ जाएगा।
1: साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे नीम के फायदे। किसान साथियों, चलिए सुनते हैं एक और गीत।

अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। जैसे कि किसान साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपसे प्रश्न पूछा था कि धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है। इसका उत्तर है जी हाँ, धान के खेत में सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: अब किसान साथियों, हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम दर्द भरे नगमे में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस भावनाओं से भरी महफिल का।

दोस्तों, कभी-कभी कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बस जाती है। ऐसे ही एहसासों को शब्द और सुर देने वाला हमारा अगला गीत आपके लिए।

दोस्तों, दर्द हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि जीवन की गहराई को समझना सिखाता है। कुछ यादें मुस्कान देती हैं तो कुछ आंखें नम कर जाती हैं, लेकिन संगीत हर दर्द को थोड़ा हल्का कर देता है।

दोस्तों, समय धीरे धीरे हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में बसे रहते हैं। इन्हीं यादगार गीतों के साथ आज का हमारा सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। विदा लेने से पहले सुनिए आज का आखिरी और बेहद खूबसूरत गीत।

अभी आप दर्द भरे नगमे कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। पाँच 5:55 पर एग्री टिप्स, विषय रहेगा बछड़े का पालन पोषण। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा पत्ता।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन सुन पाएंगे सवेरे 10 बजे। सुनिए SMS माई चॉइस कार्यक्रम।

रामचरित मानस गान कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। वतन के गीत ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 6:40 पर। देशरागनी कार्यक्रम का समय रहेगा श्रोताओं सवेरे 7:15।

प्रायचित कार्यक्रम NCERT की 1319वीं कड़ी आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

सवेरे 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे मीनू पुरुषोत्तम, मेहदी हसन। सवेरे 9 बजे आनंद लीजिए कार्यक्रम तराने सुहाने का।

12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुपर हिट सॉन्ग। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30।

1:10 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम, फनकार होंगे तलत अजीज गुलाम अली। आपके नाम फिल्मी पैगाम, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:30 पर।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने जनसेवा और विश्वसनीय सूचना प्रसारण की गौरवशाली यात्रा के 51 वर्ष पूरे किए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को आज से लागू कर दिया है। सांसद विष्णुपद रे ने मछुआरों को कृषि समान लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और MV कैम्बल भी 3 जुलाई को राजधानी श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के समाचार प्रभाग के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने अपने प्रसारण के 51 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। यह आरएनयू 1975 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी की जनसेवा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उप महानिदेशक सी सुब्बाराव, उप उपनिदेशक डी नरसिम्हा, सहायक निदेशक हिंदी प्रभाग दीपक कुमार तिवारी तथा सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने आकाशवाणी श्री विजयपुरम की 51 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस केंद्र ने द्वीप समूह की संस्कृति, भाषा, लोक परंपराओं और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सेवानिवृत्त समाचार वाचक राकेश चंद्रलाल ने कहा कि आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में विश्वसनीय

ने सूचना के माध्यम के रूप में भी आकाशवाणी की भूमिका सराहनीय रही है। इस अवसर पर अधिकारियों ने आकाशवाणी से जुड़े वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए आगामी वर्षों में श्रोताओं तक और बेहतर कार्यक्रम पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। पिछले 9 वर्षों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरें और मानवीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। यह 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सांसद और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के 28 जून 2024 के उस निर्णय को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के समान सुविधाएं और अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के समान रियायती बिजली दर, जलापूर्ति कनेक्शन, डीजल सब्सिडी तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन से अंडमान एवं निकोबार के मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य सहकारी समितियों तथा इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को लाभ मिलेगा। सांसद ने केंद्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। एमवी कैमल बे 3 जुलाई को शाम 4 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। जहाज पर अतिरिक्त सामान चढ़ाने का कार्य कल दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों का पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नामक डिजिटल प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली मोबाइल ऐप, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी होगी। नई व्यवस्था के तहत किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से उर्वरकों के लिए आवेदन कर सकेंगे, स्टॉक आरक्षित करा सकेंगे तथा क्यूआर कोड अथवा टोकन आधारित आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सभी लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा, जिससे उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। इस प्रणाली के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक

0: एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि उप डिपो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय अथवा किसान कॉल सेंटर पर 03192243434 पर संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका अनीस बेगम का आज सुबह जीबी पंत अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थीं। श्रीमती अनीस बेगम ने 13 फरवरी 1970 को आकाशवाणी में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। उन्होंने लगभग 33 वर्षों तक समर्पण एवं निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की और 31 अक्टूबर 2003 को सेवानिवृत्त हुई। आकाशवाणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम को अपनी अभिनव एकीकृत निगरानी एवं संदूषण नियंत्रित फ्लाई रियरिंग यूनिट के डिजाइन के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि संस्थान की अनुसंधान एवं नवाचार क्षमता को नई पहचान दिलाने वाली मानी जा रही है। संस्थान द्वारा विकसित यह उन्नत प्रणाली घरेलू मक्खियों और मांसाहारी मक्खियों का संदूषण मुक्त पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस इकाई के माध्यम से वैज्ञानिक नियंत्रित एवं स्वच्छ वातावरण में मक्खियों का पालन कर उनके व्यवहार, जीवन चक्र तथा नियंत्रण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रभावी अनुसंधान कर सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक मक्खियों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम, उनके प्रभावी नियंत्रण तथा कीट प्रबंधन से जुड़े अनुसंधानों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने जनसेवा और विश्वसनीय सूचना प्रसारण की गौरवशाली यात्रा के 51 वर्ष पूरे किए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को आज से लागू कर दिया है। सांसद विष्णुपद रे ने मछुआरों को कृषि समान लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। और एमवी कैमल भी 3 जुलाई को राजधानी श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए हमारे केंद्र से मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 जुलाई तक समुद्र में न जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी 3 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 4 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 2 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज एमवी कालीघाट शुक्रवार 3 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी

वापसी शनिवार 4 तारीख को शाम 4 बजे निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे कल बृहस्पतिवार 2 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराजद्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा कल बृहस्पतिवार 2 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत कल सुबह 6:15 पर स्वराजद्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल बृहस्पतिवार 2 तारीख को दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा और जलयान की वापसी कल ही दोपहर 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRB देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जन सूचनाएं समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रेया घोषाल की आवाज में श्रोताओं सुनिए 30 फिल्म का ये गीत। कुमार का लिखा हुआ ये गीत है और तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और आज के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस महान चिकित्सक, शिक्षाविद तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने चिकित्सा सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। चिकित्सक हमारे जीवन के ऐसे प्रहरी हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों को नया जीवन देने का प्रयास करते हैं। महामारी, आपदा और आपातकाल जैसी परिस्थितियों में डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह दिवस हमें उनके समर्पण, परिश्रम और मानवीय संवेदनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा चिकित्सकों के मार्गदर्शन का सम्मान करने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज ही के दिन से वन महोत्सव सप्ताह भी आरंभ हो रहा है। दोस्तों, यह सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों का संरक्षण करना तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वनों से हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, वन्य जीवों का आश्रय तथा प्राकृतिक संतुलन प्राप्त होता है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में अधिक से अधिक पेड़ लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों

वृक्षारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सप्ताह हमें केवल पौधे लगाने ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संदेश देता है। हर नागरिक यदि एक पौधे को वृक्ष बनने तक संजोए तो देश अधिक हरित और समृद्ध बन सकता है।

और आज की कहानी का शीर्षक है हरियाली का सपना। दोस्तों, बेनामपुर नामक गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में रहने वाले कॉलेज के छात्र शौर्य, सोनी, राहुल, मीरा और अमन अच्छे मित्र थे। छुट्टियों के दौरान वे अक्सर जंगलों में घूमने जाते, पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनते और प्रकृति के बीच समय बिताते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल के कई पेड़ काटे जा चुके हैं और वन्य जीवों का संसार उजड़ता जा रहा है। सूखी धरती और फैली वीरानी देखकर सभी का मन दुखी हो गया। सोनी ने कहा कि यदि आज हमने जंगलों को नहीं बचाया तो भविष्य में केवल कहानियों में ही हरियाली मिलेगी। शौर्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वन संरक्षण का संकल्प लिया और पूरे गांव को इस अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया। अगले ही सप्ताह शौर्य, सोनी, राहुल, मीरा और अमन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। वे घर घर जाकर लोगों को पेड़ों का महत्व समझाने लगे। बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे समय की बर्बादी कहा, लेकिन दोस्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ जुड़ने लगा। हर रविवार सैकड़ों पौधे लगाए जाते और उनकी देखभाल भी की जाती। शौर्य और सोनी की मेहनत ने गांव के युवाओं में नई ऊर्जा भरी। अब हर व्यक्ति यह समझने लगा था कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी।

2 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद बेनामपुर का जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जिन स्थानों पर कभी सूखी जमीन थी, वहां अब नए पौधे लहलहा रहे थे। पक्षियों का कलरव लौट आया और जंगल में वन्य जीव फिर से दिखाई देने लगे। यह परिवर्तन देखकर प्रशासन ने भी गांव की पहल की सराहना की और वन संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। शौर्य और उसके दोस्तों को सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय पूरे गांव को दिया। सभी दोस्तों को गर्व था कि उन्होंने प्रकृति के लिए मिलकर कुछ ऐसा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन गया।

दोस्तों, समय बीतने के साथ बेनाम पर पूरे ज़िले में हरित गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरे गांव के लोग भी शौर्य, सोनी और उसके दोस्तों से प्रेरणा लेकर वृक्षारोपण अभियान चलाने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरे होने के बाद भी उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं छोड़ा। वे हर वर्ष हजारों पौधे लगाते और बच्चों को प्रकृति से प्रेम करने की सीख देते। गांव के बुजुर्ग गर्व से कहते थे कि इन युवाओं ने केवल पेड़ नहीं लगाए बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित किया। शौर्य और सोनी की मित्रता तथा पूरे समूह की एकजुटता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि युवा ठान ले तो धरती को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता और समाज के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शराबी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मासूम फिल्म का ये गीत आरती मुखर्जी की आवाज़ में।

राम तेरी गंगा मैली हो गई श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। राम तेरी गंगा मैली हो गई श्रोताओं, सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

आशा भोसले की आवाज़ में श्रोताओं सुनिए फिल्म इजाजत का ये गीत। गुलजार का लिखा ये गीत है, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की अपार या ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उच्च सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं गौरव कान के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देशभर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव

0: किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रूपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रूपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम

0: माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ।

0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष एआई सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये

0: वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में, और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
2: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
0: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था, और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: तसुम जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए, ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की

0: बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में. पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल
1: जी
0: वो प्रोवाइड करते थे. तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं. दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन.
1: जी
0: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है. इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज.
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो
1: जी
0: भी एआई है.
1: जी
0: वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है. ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है. तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया. और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी
0: पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है. हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे. वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है.
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है,
1: जी
2: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने,
1: जी
2: तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इस ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द डिपो इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता

0: है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से, और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोगों का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी

0: की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन, जैसे इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूजन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल, क्वांटम है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशंस, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
3: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स,

0: नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे। जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी डिजिटल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज है उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों। क्योंकि अगर हम हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
0: हाँ,

0: जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हो स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
1: जी
0: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
1: जी
0: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये

0: कि हम लोग ये करें। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है। और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे है। आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अजीब अजब प्रेम की गजब कहानी से आतिफ असलम व अलीशा चिनोई की आवाज़ों में। इरशाद कामिल का लिखा ये गीत है, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: Shining sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me.
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में श्रोताओं सुनिए फिल्म बेकाबू का ये गीत। निदा फाजली के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है अनु मलिक ने।

दिल है तुम्हारा। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

पूछता हूँ, आपने सुना हेलो ब्रदर्स फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और कार्यक्रम के अंत में सुनिए तेरे नाल लव हो गया फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों में बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31:16 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा श्रोताओं अभी ही प्राइमरी चैनल पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:28 व 36 सेकंड हुए हैं। हम अपनी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026।

अनमोल विचार। शांत मन में ही श्रेष्ठ विचार जन्म लेते हैं। जिस प्रकार शांत जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। कभी सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे समय में यदि हमारा मन शांत रहे तो हम हर समस्या का समाधान धैर्य और विवेक से कर सकते हैं। शांत मन क्रोध, तनाव और नकारात्मकता को दूर करता है। ये हमें दूसरों की बात समझने, सही निर्णय लेने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल और परिपक्वता की पहचान है। ये था अनमोल विचार। और अब श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। आगाज मातृ वंदना के साथ।